जोजोल पाथौ नेपाल सम्बन्ध पी खुद कुन लागा पञ्चमी थो रेडियो नेपाल ख आनेना दिस जिरुबी पाख्या नेपाल भाषाया समाचार। प्रधानमन्त्री भलेन्द्र शाह वङ्गु बुधबार रसुवाया भोटेको सी खुसिया खुसीबा वोगु जलवायु हुपा हुने जुगु धेयादिगुदु। सामाजिक सञ्जाल पाखे मिगौ वेकल जलवायु हुपा हिमालय लागाया तापक्रम छगु फुटी च्यागु डिग्री तक्क उपगुली थो हात्या फे मागु कनादिल। नेपाल जलवायु हुपाया हुने फे मागु संस्थिया त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले डिसी लाख फे मागु यी वोगु धेया दिसे च्वापु छु जुया कुतोङ्गो ल थुली मछि ल घन नौल धैगु निस्यालिस मानव सभ्यता बी मागु कनादिल। प्रधानमन्त्री शाह बिना सञ्चाको खुसी बालिपा उद्धारो राहत इनेगु पुनस्थापना नीति योजना चनागु धया दिगु दुसा थोए झोले। प्रधानमन्त्री शाह मिग छगु अर्ब ढिवा फ्यानागु कनादिल सा खुसीबा शङ्कगु मुगलिन ये या सडक कृष्णवीर खण्ड भदौ दुने भिङ्केगु याना ज्यान योजका गौ धया दिगुदु। खुसीबा लिचो लाक लागा यातायात निजा केगु नीति अस्थायी संरचना देखेको ज्या योजना चौगु नध्याय दिल थोए जोले। प्रधानमन्त्री शाह खुसीमा कष्ट फया चौपिन्ता जीवन रक्षा यासे वेक पिनीको स्वास्थ्य सुथन लागे त वास नापा मनोपरामर्श यासे सरकार पुनस्थापना पाखे योजना चनागु कनादिल। प्रधानमन्त्री शाह थो हाठ्या लिपा जलाखला दे त पाखे कोहाली गोया चौगु न जानकारी बिया दिल। भोटेको सी खुसी वोग विनाशकारी खुसी बाया हुने सिपी मध्ये आतक दोची गुइसोमा सिया सिमलुया गुदु उकी रसुया पिङ्यामा नुवाकोटे सचिवङे छमा धादिङे ङेन हेमा चितवने सोमा सोसो निछमा गोर्खा खुइखुमा तनहुइले सुई च्यामा नवलपरासी पूर्वे निसो झिङखुमा नवलपरासी पश्चिमे सचिव गुइमा व भारतीय गुमायाना मुक्क दोची व गुई सोमास्या सिम लुइक गुख लुयावोपी सिंह मध्ये दोची व चेनिमा सिया लास जाँच मुचुल्का पुवने धुङ्क गु दुसा ङे च्यामा सिया गु सिमा थतितिया त ल लागुदु नापा मसिका मुजुक गु गुसो झिन्छ गु सिमा सिया गु धला नेपाल प्रहरिया वेबसाइट नापा अब्लोटियागुदु। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ खुसीबा लिचो लागु लाग्या उद्धारो राहत नीति राज्य फुक संयन्त्र छेलागु धया दिगुदु। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मिहिग गोसागु पत्रकार मुज्या गृहमन्त्री गुरुङ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह थथ्या समन्वय स उद्धारो राहत ज्या जुया चोङ घोकना दिल। गृहमन्त्री गुरुङ भारत चिनिया तना थुकिया नीति इनाप्याना गु विदेशी विज्ञ तेस नेपाली सेना नेतृत्व जल विद्युत आयोजना ते के तना चो पिन्त मालेगु ज्यायाना चोङ्गु धेया दिल। वेकल जलवायु हुपाय हुने नेपाल दपतिक ची धङ्गु त धङ्गु प्राकृतिक प्रकोप या झाँका फेमाला चोङ्गु कना दिल। सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासो पाँच सतको सर्वदलीय बैठके भोटेकोसी खुसीबा लिचो ला पिन्ता मालेता उधार याता राहत याता व्यवस्थित देखेता बागमती प्रदेश हो लिचो लागु फुक्क स्थानीय तहसँग सर्वदलीय संयन्त्र देखा न्यज्यागु सहमति चुलाकगुदु। सिंह दरबार मिगचुङ्गु प्रमुख राजनीति दल या निकगु तहया नेता पिनीगु बैठके फुक्कन दल छप्पा जुया विपद या प्रतिकारेखन जुई मागु लिचोपिका गुख अध्ययना बैठकमा विपद लिपा पुनस्थापना पुननिर्माण या नीति नापा राजनीतिक संयन्त्र देखा राष्ट्रिय सहमति नापा निहज्याको सहमति जुगु बैठक लिपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेल जानकारी बियादि गुख छ। अध्ययना बैठक लिपा मालेगु उदारो राहत वितरण सरकार या ज्या कारवाही या विशेष सल जुगु व थुकिया त अञ्च लिचो लाखेको नीति राजनीति दल त्यसँग थथगु दलसँग सुझाव त कया चुङ्गु नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता देवराज आचार्य कनादिगु दुसा राष्ट्रिय सङ्कट अहिले मनुतेगु जिउ धन्य रक्षा नीति फुक्कन छपा जुया जुई मागु सुझाव बैठके वोगु व थपिसँग थुकिया त निजाका चुनागु चालिसिया जानकारी बियादिल। अध्ययन नेकपा एमाल्या प्रवक्ता प्रदीप गेवाली नेपाल या संविधान विपद व्यवस्थापन या त चुङ्गु तहया सरकार अधिकार लागा दुने त गुली प्रदेश स्थानीय सरकार नापाया सेनागु समन्वय मागु धया दिलस राजनीति दल तेस धागु राष्ट्रिय सामर्थ्य महत्व जागु हिंसा जुगुली सकटिया अहिले प्रधानमन्त्री हे न्योज्याना दल त नापा खलासा लिचो लाइगु सुझ थपिस बैठके बियागु नेता गेवाली कना दिल। अध्ययना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेता वर्षमान पुन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहया सरकारदेखि सामान्य जुई मफया लिचो लाइभले तक्क राहत थिङ्के मफुगुली थुकी ध्यानबित सूचना बियाको कना दिलसा बैठकले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साई विश्व तापमान उपयोग हुने नेपाल अकल्पनीय क्षति फे मागु लिँ थुकिया मा कथया क्षतिपूर्ति नीति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चदेखि सल हुने गुधया दिलसा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नापा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नेपाल नेतृत्वदायी भाला नापा विकसित राष्ट्र तेसङ यागु आफ्नो कार्बन उत्सर्जन या हुने नेपाल थे जागु अल्प विकसित राष्ट्र तेसा क्षति फे मागु मुद्दा लुनेता थपिस सुझाव बियागु नेता साई जानकारी बिया दिल परराष्ट्र मन्त्रालय भोटे कोशी खुसीबा सन्तना चौपी विदेशी मनो तेमा थिति तेगु डिएनए प्रोफाइल छोया हेता इनाफ यागुदु खुसीबा विशेषण जानकारी बित्त मन्त्रालय मिगो यागु नियमित पत्रकार सम्मेलन खुसीबा मुङ्कगु सिंह मसिकेगु नीति तना चौपी विदेशी मनो तेमा लिक चौपी थिति पिसा डिएनए प्रोफाइल छोया हेता इनाफ यागु ख विदेशी मनो तेमा थिति पिसा थगे देशे डिएनए प्रोफाइल देका नेपाल प्रहरी आधिकारिक इमेल ठेगाना छोया हे फैगु परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवक्ता सहसचिव लोकबहादुर पौडेल छेत्री जानकारी बिया दिला थोए दति खुसी बाया हुने थिथि सुई गुगु देया न्यास व गुइमा विदेशी मनु नापा पेदो महासिबे उपतनाचोङको परराष्ट्र मन्त्रालय अब परराष्ट्र मन्त्रालय नेथङ्गुदु सरकार रसुवा नुवाकोटिया खुसीबा लिचो लागु लाग्या सम्भावित संक्रामक लुए त बोलङ्के मविता विशेष निगरानी व प्रतिकारीय गतिविधि या त न्युजियाको अगुदु स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मन्त्रालय सहसचिव हेमन्त चन्द्र ओझा कथ मन्त्रालय स्वास्थ्य संकटकाल व विपद व्यवस्थापन एकाइ व स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य न्याके त केन्द्र लिचो लाइगु लाग्या संक्रामक लुए नियन्त्रण व स्वास्थ्य प्रतिकार नेतृत्व यानासँग दु खुसी बान लिचो लागु लाग्या तेके ज्वरो व झाडा पखाला लुए या नियमित छागु छक्क अनुगमन या यता निगरानी प्रकोप प्रतिकार व्यवस्थापन व विश्लेषण प्रणाली सोर मास यहाँका तगुदु सेलागु शान्ति समृद्धि हो लोक कल्याण या कामना नापाम हिग श्री पशुपतिनाथ ड्यगले विशेष महारुद्री नापाया क्षमा पूजा यागुदु पशुपति लागा विकासको सञ्चालक परिषद या नाया नापा जुया सोनादीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेल गणेश मूल ड्यग जग लागा देशे शान्ति सङ्कल्प नापा महारुद्राभिषेक उले जयना दिगुख रसुवा खुसीबा लाना जीवन नङ्का चोपी तना चोपी घापा जोपिनी गु कल्याण या कामना नापा महारुद्राभिषेक यागुख प्रतिनिधि सभाया बैठक थौन हिने छताइले चोनिगु गोसादु सिंहदरबारे चोनिगु बैठके सभामुख डोल प्रसाद अर्याल भोटे कोशी खुसीबा थुकी दुकागु क्षेत्रीय विशेष विशेष प्रस्ताव न्यु ज्यादल दुसा बैठके सभामुख अर्याल भोटे कोशी खुसीबाया हुने जुगु जनधन्य क्षति या विशेषण दुःख पङ्का दिगु ज्यादल दु अथेयाना थौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व पर्यटन समिति व विधान व्यवस्थापन समिति बैठक चुने ट्याङ्गु दु सुतेसिया गुट्याट्या इले चुने चुना चङ्गु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व पर्यटन समिति बैठके रसुवा खुसीबा चलया हुने पर्यटन लाग्या फेमाला चोङ्गु लिचोया विशेषण सल यैगु ज्याचो दुगु खसा अथेयाना हिने झिन्ता इजुया झिङ्यागु मिनेटे चोनिगु विधान व्यवस्थापन समिति बैठके नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 या साविक व्यवस्थामा केगु नापाया विधेयक 2083 दथी दफावार सल यैगु ज्यादलदु राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भोटेकोशी खुसीबान लिचो लागु लागाया मचा मस्ते गु किपा हो श्रव्य दृश्य जोना सामाजिक सञ्जाल नापा सञ्चार माध्यमे पोस्ट माया त सकल दति इनाप यागुदु परिषद अधिकृत नापा सूचना अधिकृत राम बहादुर चन्द मिग छगु सुचौपी थसे मचा मस्ते गु गोपनीयता ल्याङ्का ते मागुले उज्यागु जोल सामाजिक सञ्जाल के मते त इनाप याना दिगु ख सूचना भदौ 10 गते भोटेकोशी खुसी जुसे त्रिशुली खुसी वोगु हठ्याञ्चाको खुसीबा या पीडित व लिचो लापी मचा मस्ते गु उद्धार राहत ग्वाली व मेगु सेवा ललहागु छुन किपा हो श्रव्य दृश्य ज्वल सार्वजनिक मयाता नेथना तगुदु
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने नेपाल नेपाया नितिन चीन राजदूत माओ मिङ मिग नाप्लाना दिगुदु सभापति लामिछाने या बुढा नीलकण्ठे दुगु छिए जुगु नाप्ला ज्या खुसीबासम बोलङ्गु लकसया विशेषण सल जुगु र सोपा या प्रवक्ता जगदीश खरेलान जानकारी बिहा दिगु ख थो नाप्ला ज्या राजदूत मिङ भोटेकोसी खुसीसँग जुगु क्षति विशेषण दुःख पङ्का दिलसा मालेता व उद्धार निसे पुननिर्माण तक्क ज्याके नेपा या ग्वाली दुगु कनादिसे वेकला नेपा या त न्याथे जागु कथा या ग्वाली या यता चीन सरकार तयार जुयागु बचन बिहा दिगु दु सभापति लामिछाने विपद या इले चीन देशना वया चङ्गु ग्वाली या त कया सुब्या देशना दिलसा नेपा या विपद जोखिम म व व्यवस्थापन चिने आर्थिक प्राविधिक ग्वाली महतन जाइगु कनादिसे वैगु दिने अझ ग्वालिया नीति इनाफ्याना दिल रोसवा खुसी बालिपा तना चोपे जुम्लाया मनुत मध्ये आतक नी च्यामा सम्पर्क के वोगुदु फुकन्सिबे उप पाता राशी गाउँपालिका स लचगा नेथे रसुवा ठेङ्कुपी हेखुमा मध्ये आतक नि सोमा मनु जक सम्पर्क के वोगु गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण सिंह बोरा जानकारी बिहा दिल भोटे खुसी खुसीसँग वोगु खुसीबा हुने लिचो लापी मनु ते त राहत उदार नेथे काभ्रेया हेगु स्थानीय तह छगु करोड उप ग्वालिया गुदुसा जिल्ला दुगु राजनीति दल संस्था मनोतेसन राहत या ग्वालियागुदु अतियाना भोटेकोसी खुसी वोगु विनाशकारी खुसी भाषण लिचुलापी मनोते त उद्धार या नीति पोखरा व्यवसायी नारायण प्रसाद पौडेल नेतृत्वले यहाँका तगु व्यवसायको शैक्षिक प्रतिष्ठान पी छगु लाख झिन्छदो सचिव झिन्छतका दा ग्वालिया गुदु थोएझोले कर्णाली प्रदेश सरकार प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोषे निगु करोड ग्वाली देशा गुदु राष्ट्रिय सभा या बैठक राष्ट्र दलित आयोग अध्यक्ष प्रतिवेदन दूत बिटिएङ गुदु सभा या ठाउँ चुनिगु बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या थासा कानून न्याय व संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम राष्ट्र दलित आयोग दक्षिपतिक 2081 अध्यक्ष प्रतिवेदन सभा नपान्य वैगु ज्याज दुगु खसा मेगु बैठक थोए 23 गते निनेसिया छता एजुया झिङ्यागु मिनेटे चोनिगु ज्यादल दु चीन सरकार नेपाल चीन दतिया उत्तरी नाका तातो पानी पारी दुगु झाङमु पोट अनिश्चितकाल तकया नीति तिना बिगु तिनागु जानकारी इमेल पाखे सूचना बिगु दु लिपा वैगु विपद या त ध्याने तसे चीन सरकार तातो पानी भन्सार कार्यालय भन्सार अधिकृत तुलबहादुर पाण्डे या त थो सूचना बिगु ख वैकया कथन चिनी अधिकारी पिन्च रसुवा खुसी बाओ उकी ठेङ्कगु छेटिया त ध्याने तसे झाङमु पोर्ट्स भन्सार ज्या बन्द यागु नापा अनया कर्मचारी प्रशासन या त नापा सुरक्षित थासे यङ्कगु दु नेपाल टेलिकम भोटेकोसी खुसी बासन लिचो लागु मेगु सुङ्गु लागा पुनः सेवा सञ्चालन ह गुदु मिग धादिङ्या कल्लेरियो नुवाकोट्या भद्रटार थर्पेक व पुसनटार लागा हान सेवा सञ्चालन हगु ख थोनापा खुसी बास लिचो लागु नेपाल टेलिकम या सचिव निगु मध्ये सचिव झिन्सोङको साइट सञ्चालन वगु नेपाल टेलिकम धागुदु आदेश पिनिया बुख रुस किएब नापा या जख या लाग्या ड्रोन व ब्यालिस्टिक मिसाइल आक्रमण याबले झिन्नीमा सिगुदुस झिन्छमा घापाजुगुदु मस्कोले पाङ्गु इले किएबे आक्रमण या त छकगुदु युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की रुसी आक्रमण या त आतंक या दसु विषय युक्रेनी हवाई रक्षा त आपलाम बल्ला के त मा कथा या ग्वाली बिता थमा ग्वालिमी दे तेता इनाप्याना दिगुदु कोलम्बिया या विद्रोही नियन्त्रित लाग्या अनया सेना यागु कारवाहीले निमा छापामार सिगु कोलम्बिया या राष्ट्रपति अबेला ड्रो डेला एसप्री एला धया दिगु दुसा वेकल कारवाहीले निमा नार्को आतंककारी त सिगु न्यामासित जोनागु निमा मचा मस्त उदारियानागु सामाजिक सञ्चाल या एक्स पाखे सूचना बिहा दिगु ख आ मौसम या जानकारी थौ देया हिमाली लागा छु व पहाडी लागा यको थासे मलाना पालाप्सा तय भतिजा तस्क वा वैगु चपु कुहा वैगु सम्भावना दु बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई लागा छु थासे व मध्य प्रदेश या कोशी प्रदेश या तराई लागा या मो थासे मलाना पालाप्सा तय भतिजा तस्क वा वैगु सम्भावना कुबिगु दुसा देया हिमाली लागा या व
बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशिया पहाडी लागाया छगुनीगु थासे आप्लान तस्कौ वाविगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या तापुदु वङ्गु नि पे गौसङ ये सोनि गया क्वाज नि च्यागु फुटी पेङ्गु डिग्री सेल्सियस जति चोङ्गु खस थौ निने ये सोनि गया क्वाज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु दुखुमा दु थौ सुथे ये सोनि गले सुथे स्याङ्या त इजो या सुइ खुगु मिनेटे लुगु निभा सनि ल खुता इजो या निगु मिनेटे बिगु जुगुदु रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताईले नेपाली भाषा समाचार नेनादिसँग सुभा

पौडेलकी सुङसुङ लोन पो पौडेलकी नाम गिरवा की जोसालेन्सी यम्बुला बंगे क्यों फोक्सिनांग यम्बु की टोछम सखुलतीवा सुंग्योप की नेतांगलारंग गोतोप सिंह युछे की थोपो लेने ख्याफेल की गोला तिरिला सुनांग सुंगो कृषि नाथुंग तेजिन खरिक लोनपो गीता चौधरी की रंगजुंग की खापातिवा तंग क्यान भोटिको सिचांगबुला हौ श्वतक तंग रंगजुंग नेतांगी कोला टोंगु क्यानांगवा लोनखांगला छुंगुप टोंगु की रिमला नाम गिरवा की कोर्तिवियाला ग्यालखाप की खाक्सेन पोची जमुलिंगला रंगजुंग की कोला थेतो फ्लारिम तिवला हुर्थक क्याने छोकसुक की गौतंग नाम गिरवा की सिजुला ओंगछ की सिला गोचुई तहुंगु कोप सुमजुसा चिकिल हेन्जोम मचिंगे जमुलिंगला कोटि केतो फ्लेन्जोमला यम्बुकी माउन्टेन एजेन्डा खुर्नी छोकसुक कितोप लोनपो चौधरी की सुङसुङ तुरङ केने लोनपो चौधरी की नाम गिरवा की जोसालेन्सी थेन्दुप कालेतिवी तुछोलारङ जम्बुलिङ स्थला यम्बुकी वङछा थाक्सुत कितोपला लोनखाङकी ख्यालेन गोतोपकोला सुगेप नाङसुङ टोङ्गु की रिम्बाला ख्यापातिवी छजो फरुप खाकी टोकपा डपकोला लोपजुङ क्यानी ख्यापातिवी लाउ लोपजुङला सुङकी खाक्सेन्पो चिगो सुङक्वा रसुआ की फोटिको सिला हुआ गलोप पदो लाकी गते चितम्बा सेरमो हुआ श्वेता की जोसालेन्सी नासा गलोप त्रिशुली तंगा नारी ने चंगबी खुर्नी चितवन केलो फुंगबो नांगला सही सुम तंग सुमजुसुआ नगा फुंगमो टिक्याव सेनगुआ चितवनला न्योंगोशी किमा थुपगो फुंगबो तिवी डेने थुनी सुंग्योप क्यान जंगनी फरतपुर की देवघाटी नाथुंगला मिक्तुम नांगला टिक्याव एसपी रामेश्वर पौडेल की ख्यान्थोक नांगसुंग तंदा यम्बी मकमी कुरसुंगो मकमी तंग सशस्त्र मकमी पिर्मी डिला फुङबुतिवा छोलोपताङ टरी केतोब्लाका हुर्थक क्यान खिगोतो एसपी पौडेलकी सुङसुङ रसुवा की फोटिको सिला तेजिन त्रिशुली चाङबोला हौ श्वेताकी जोसालिन्सी क्योर्नो फोकको तन्दगला रा तेजिन सुङक्योपकी लाकला खाक्छेन पोची कर्मचारी सञ्चय कोसकी टेङ्गा करोट नेताङ बुमङ गप्चो सुङला रोक्रामा ख्याउ सेनक्वा सञ्चय कोसकी छोकचो भूपाल फराल कोसकी प्रशासक विजय कुमार श्रेष्ठ ताङ कोसकी कुछप तिवी नोर्लोन खाङला ल्यारेमेची कोटी क्यानी सुङला रोक्रामा ख्याउ टेङ्गा करोट नेताङ बुमङ गप्चो नोर्लोनपु डाक्टर स्वर्णिम वाक्लेला तुग्रांग केने काब्रे प्लान्चोक जोंखी संग सान्दे सेन्ता दिनके तेजेन जोंखी सुङताङ गिर्की छोकपातिवा तेरिकी टेङ्गा दोनी करोड चिकताङ बोम चिथम्बा सुङला रोक्रामा कितोप थाक्छोत्याउ सेनक्वा रसुवा की फोटिको सिला हौ श्वेताकी जोसालिन्सी क्यों फोको नुआकोट की लोपटा तिवा तुछो चे सेक जिनक्योङ मिकेतोप गलग्वा श्वेताकी क्यों फोको नुआकोट की विद्युत टोङख्या नङ्गी किस्पाङ युल छोकपा नङ्गी लोपटा तिवा तेरी तन्दा बन्दा उखोतोपताङ बेलकोट गरी ताङ तार्गेश्वर सखुलकी लोपटा तिवासँग जिनक्योङ मिकेतोप विद्युत टोङख्या चो राजन श्रेष्ठकी ख्यान्तोप नाङसुङ जलस्रोत तेजिन जल विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र कि बाढी पूर्वानुमान महाशाखा कि फोटिको सिताङ त्रिशुली चाङबु चिप्की चाङबुला छु ग्याउ तप्की चकपु क्यान देतुब्ला तिरिला सुङ्गुवा महाशाखा कि श्वेता ख्यापा सरस्वती विष्ट कि यम्बुताङ ज्ञान कि संसाम सकुल चिप्ला गोतुप चो चोपला शङ्काक थोपु तप्की यम्बा लेन ख्याफेल माक्यौ सेक्ला रसुवा नुवाकोट कि चाङबी गाडी गुरिला गोतुप मितेवला थोरिम चकपु क्यान देतुब्ला सुनङ्गुवा छेर्वी जोसालेन्सी आरिङताङ सला यम्बा जोङखा तिवला सङ श्वेता खुङ थोपु तप्की ताप्ले जुङ सङ्खुवा शोभा सोलुखुबु रामी साप दोलखा सिन्धुपाल्चोक काभ्रे प्लान्चोक ललितपुर फक्तपुर काठमाडौँ धादिङ जोङखी मितिवलासँग सुङक्योप क्यान चकपु केतुब्ला सुङ्गुवा तुरङ याने मकवानपुर चितवन गोर्खा तनहु लमजुङ मनाङ कास्की स्याङ्जा पर्वत म्याग्दी बागलुङ स्यार्ताङ नोप रुकुम रोल्पा जाजरकोट दार्चुला बैतडी डडेलधुराताङ कञ्चनपुरकी चाङबोतीवालासँग छुक्याउ तप्की चकपु क्यान देतुब्ला मिमाङ तेरेला सुङ्गुवा सोलुखुम्बुकी सोलु दुधकुण्ड टोङख्यार वराङ दिन गार्माकी माध्यमिक लोपटाकी फुथाकफु पल्जोरकी तन्दगला टेङ्गा करोड चिक्ताङ बुम च्याङ्गाकी अक्षय कोषको चुनगुवा लोपटाला कितुप डोसुङकी तन्दगला लोटेङमा अनुदान ताङ चन्दा लङ्गो नेताङ मेता जोइ पल्जोर फुथाकफु जप तन्दगला अक्षय कोषको चोयेन लोपटाकी तन्दगला टेङ्गा करोड चिकी अक्षय कोष गोचोतो मिगिलो खोनी गोचो ती ल्यारिम्ला नौ चोइ सिनाङ टेङ्गा बुम च्याङ्गा लाक्पादु युलछोपी छोकचो सोनाम ग्याल शेर्पाकी ख्यान्तोक नाङसुङ अक्षय कोष गोजुतुप ल्यारिम्ला लोपटाकी गोमी लोपटुक्तिवा ग्यालखाप्ताङ छिकेला गोतुप गार्माताङ क्यान थिनी गोतुप मेतिवी क्याउ रोक्रामकी ती टेङ्गा लोपटाकी गेगेने चो विनोद सिंह तामाङताङ लोपटाकी टरिक छोकपी छोकचो दोमी शेर्पाला चिगेको येन रेडियो नेपालने शेर्वी साङ्गिर डुप्सुङ थुचिछे

0: छु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रिठाङनी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ काइब्लोन बालेन्द्र साहसे विपतला धुरी सरकार दा भ्लापा खाजी बिसी भ्लापा नाबा छुट आरे बिसी सुङबा मुला प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङ्री लेङ्बो थान्सिबान काइब्लोन साहसे सङ्कट लाचु धुरी हुल्ला गोबाङसे मिखली पुइबा आहिन हुल्बा दा हिम्मत आँथेन भरोसा पिनबारी बङ लाबान खाबा मुला बिसी सुङबा मुबा काइब्लोन साहसे लानन सेम सुखाबा मुसाइडन दुङाल प्रासाल बा दुई मुनोन आरे बिसी सुङबान राङला माङकादे राबन मुबा जाजाकोला कादे नेसी हासी टिबा आबा आमा जेजो आलेथेन नाना बुरिङ कादेदा चुनोन भदौ लाला चुइला कुनो रसुवाला भोटे कोसी घान्धिरी खाबा ग्रेन भाल्से ब्योङना लासी भोरबासे राङदा लानन ग्रेन दुङाल ताबा मुला बिसी सुङबा मुला काइब्लोन साहसे खालाइसे मानबारी सुत्ताइनोन आखाम बा विपत्तिरी परव तासी शिवा कादेरा दुङाल प्रासाल चुबान डोङबाला दिम थेमेसे चु दुङाला धुरी सु नाबारी खाम्बा बङ याङ्गाई बिसी सुङबा मुला चुराङलासिन काइब्लोन साहसे घाइते ताबा बेनान्दा योना भीमा योना खामगाई बिसी सुङबान राङला ङेबा ङेङ्गोर दाते नोन च्यापारी आखाम साइनोन अझैनोन खाला वा बिसी ग्याम च्यासी टिबा हुल्बाला दुङालदा राङसे ङाङ ङाम ग्याम गोसी टिबा मुला बिसी सुङबा मुला काइब्लोन साहसे भोटे कोसेरी खाबा ग्रेन भाल लिछा नेपाली सेनाला ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरणला क्विक एक्सन टिम थिएन काइब्लोन थिएन ब्लोन सेङझाङला गेदिम ऱ्यापिङ एक्सन टिम ग्याम सूचना पिनबा थिएन अनुगमन लासी टिबा मुला बिसी सुङबा मुला काइब्लोन साहसे सुङबा अनुसार दाते धोना नेपाल सरकारलाई राहत कोसरी अर्ब निस लाख ब्रेचुई ब्रे तोङ ङाचुई निस ग्याजा निसे सिका चुई निस टाङ्गा झम्मा ताबा मुला बिसी सुङबा मुला तिलमाथे कोष ग्याम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण दा अर्ब घिक टाङ्गा पिन्सी झिन्बा मुला थे ग्याम करोड डु लाख निश्चुई ङा रसुवा नुवाकोट धादिङ गोर्खा थेन तनहौला भाल प्रभावित गोर चुइङा पालिकारी पुइसी झिन्बा मुला बिसी सुङबा मुला राहत कोसरी लाख डुचुई गिक तोङ ब्लिचुई गिक ग्याजा निसे सिका नि अमेरिकी डलर नोन झम्मा ताबा मुला बिसी काइब्लोन साहसे सुङबा मुला काइब्लोन साहसे भाल प्रभावित कदेदा लुइर्दा सोना लाबारी सरकारसे लाबान खाबा गेला फिरी सदन्दा जानकारी धोन्छ्युबा मुला क्युनेर थिएन जल विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र भाल पूर्वानुमान महाशाखासे भोटे कोसी त्रिशुली छ्याम गान्धीरी तिनी क्युई लेबारी खामला बिसी पाङबा मुला महाशाखाला भाल विपत सरस्वती विश्वसे सुङबा थेन नुवाकोट तासी ब्योङबा होजा गान्धी थुम्ला भिनी कादेदा सतर्क ताबारी मोइजेन लासिबा मुला नेपाल चिन मुर थुम गाम्री ताबा ग्वेई खाजीबैनोन धुरी थिबारी खाम्बा ताबासे दोषी अर्को सूचना आँखादे धोना भिनी कादेदा सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा मुला नाम्नोन ताइबारी खाम्बा ताबासे तिनी थिएन नाङ्गर होजा झोङ्री भाल्ला ग्रेन जोखिम मुला विष्टसे सुङबा अनुसार ताप्लेजुङ सङ्खुवा सभा सोलुखुम्बु रामेछाप दोलखा सिन्धुपाल्चोक काभ्रे पलाञ्चोक ललितपुर भक्तपुर याम्बु धादिङ मकवानपुर चितवन गोर्खा तनहु लोमजुङ मनाङ कास्की स्याङ्जा पर्वत म्याग्दी बाक्लुङ रुकुम स्यार रुकुम नुपुर रोल्पा जाजरकोट दार्चुला बैतडी डरेलधुरा थेन कञ्चनपुर नाम्ला जोङ कादेरी ब्योङबा गान्धी थेन स्योङला गाम्री चिबा कादेदा तिनीनोन सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा घिन्ला बिसी सुङबा मुला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीला थुतबोन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसे राष्ट्रिय विपत्तिला चुधुरी सरकारसे बेनान पक्षसे विश्वास लाबारी खाम्बा घे लाबारी खाम्दोला बिसी सुङबा मुला प्रतिनिधि सभाला तिनी चिबा चिसाङ्री राङला लिङ्गो थान्छुबान नेकपाला थुतबोन प्रचण्डसे सङ्कटला धुरी सरकार हुल्बाला घुङ्री धोबारी खाम्दोला बिसी सुङबा मुला चिसाङ्री नेकपा एमाले संसदीय दललाई गोबोन रामबहादुर थापा बादलसे राष्ट्रिय सहमति थिएन। सामूहिक वंशे जेखेन दातेला प्राकृतिक विपत्ति लिछाला शङ्कर दा छाङना लाबारी खाम्से दा मुला बिसी सुङबा मुला चुराङलासिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा संसदीय दल्ला रो गोबन गणेश पराजुलिसे विपतला धुरी हुलबादा सोना लातोबा गिक्छा दाहितो हिन्ला बिसी सुङबा मुला प्रतिनिधि सभाला तिनी चिबा चिसाङरी राङला लिङ्मो थान्चिबान रो गोबोन पराजुलिसे रसुवा जोङला भोटे कोसी गान्धीरी खाबा भाल पीडित दिम थेमेसे मानबारी खाम्बा नुन आखाम्बा लासी युल्बाला लुई सोना लाबारी दाते सरकारसे बङ लबान खाबा मुला बिसी सुङबा हिला चुराङलासिन नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल्ला गोबन भीष्म राज आङ दाम्बेसे रसुवा जोङला भोटे कोसी गान्धी ताबान त्रिशुलिरी खाबा ग्रेन भाल्से रसुवा जोङला धादिङला छ्याम्री स्यान्दो जोङ कादेरिन लानन छेती ताना लाबासे राङदा दुङ्गाल ताबा मुला बिसी सुङबा मुला चिसाङरी श्रम संस्कृति पार्टीला सांसद ध्रुव राज राईसे रसुवाला भोटेकोसी गान्धीरी खाबा भाल पिडिदा उद्धार लाबारी राहत बो लाबारी थिएन पुनर्स्थापना लाबारी तोजी भिसाम श्रमला श्रम दान लसेदा मुला बिसी सुङबा मुला चुराङलासिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापापा नेपालला सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईसे विपतला धुरी आरोप लाबा थिएन लेठिम आलाना उद्धार लाबारी थिएन राहत बो लाबा ताम्री ध्यान पिनबारी सरकार दा मोइजेन लाबा मुला प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङरी रसुवा ला भोटे कोसिरी खाबा बाल्दी शोभा छेतिदा दुङ्गाल मानबान विशेष प्रस्ताव पारित लाबा मुला रिमछिम पर्यटन थिएन नागरिक उड्डयन ब्लोन खड्क राज पौडेलसे भोटे कोशी भालग्याम पर्यटन थुम्री अर्भ घाँचुई बिमा लानाला छेती ताबा मानबा मुला बिसी सुङबा मुला मोक्युल बेरेलबा थिएन पर्यटन समितिला तिनी चिबा चिसाङरी ब्लोन पौडेलसे भाल प्रभावित थुम्दा जलवायु सम्पदाला रूपरी विकास लाबारी ब्लोनखाङ प्रतिबद्ध मुला सुङबान बजेटरी ग्लिङ गाङदा जाम्बुलिङ जलवायु सम्पदाला रूपरी ख्यालासी सोना लाबारी जाम्बुलिङलान भङ तादोला बिसी सुङबा मुबा रसुवाला भोटे कोसिरी चुभदौ चुइला कुनु खाबा भालसे त्रिशुली थेन नारायणी गान्धी ताबान चितोन्डी स्यापा सिबा लुइरो कादेरी ग्यार्जा सोम्से मेन्दो सोमचुइङा बिमा लानाला सिबा लुइरो व्यवस्थापन लाबा मुला सनाखत ताबारी आखाम्बा सिबा लुइरोदा भरतपुर महानगरपालिका गिक देवघाट रिरी तिलमा मुना दोना व्यवस्थापन लाबा हिला सिबा कादेला जी ए एन नमुना सुरक्षित थानबान रिरी व्यवस्थापन लाबा मुला बिसी पाङबा मुला मोसेबा सिबा लुइरो दिम थेमेसे किन्सी बोर्बा मुला गान्धी किनारी सिबा लुइरो कादे स्यापन मुला नेपाली सेना नेपाल प्रहरी थिएन सशस्त्र प्रहरी से डिक्सी माइबा थिएन व्यवस्थापन लागे लबन खाबा मुला सानाम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरीला ओन्छाङरी जलवायु विज्ञ कादे थिएन भोटेकोसी गान्धीरी खाबा भाल थिएन जलवायु सङ्कटला ताम्री काठुई ताबा मुला ब्लोन खाङरी ताबा काठुइसे जलवायु पोबा ताम्दा युल्बाङ प्राथमिकतारी थान्बन जाम्बुलिङ मन्श्री नेपालला पो कोङबा तादोला बिसी सुङबा मुला नोजादुरी ब्लोन चौधरीसे जलवायु न्यायदा अधिकारला रूपरी किन्बान दखाबा कोष निचुई कोप निचुई गिग ला ह्वाल राङबा जाम्बुलिङ मञ्च कादेरी नेपालचे माउन्टेन एजेन्ट ला रूपरी गोबाङ लाबा बिसी सुङबा मुबा भोटेकोसी त्रिशुली थुम्ला विपत लिचा नोङबा से कादे सोबारी मोक्युल जलवायु वित्त सेङबान विशेष कोष सोबारी बङ लातोला बिसी विज्ञ कादेसे सुङबा मुला रसुवाला भोटे कोसी थिएन त्रिशुली गान्धीरी चु भदौ चुइला कुनु खाबा भाल ग्याम प्रभावित मिनिका देदा राहत थिएन उद्धार लाबारी कर्मचारी सञ्चय कोसे करोड निसे लाख घाँची नोर रो लाबा मुला कोसे राङला संस्थागत युल्बाङ उत्तर धाइतोरी होजाटाङ्गा काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोश्री जम्मा लाबा खिला कोष सञ्चालक समितिला चोहो भूपाल बराल कोषला प्रशासक विजय कुमार श्रेष्ठला छ्याम कोष ग्रेन अधिकृत कादे से नोर ब्लोन खाङरी सेङबा गेखोरी करोड निसे लाख घाँचुइला चेक नोर ब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेदा पिन्स्युबा मुला प्राकृतिक विपत पुइसी खाबा कादेदा काभ्रे पलाञ्चोकला गोर्निस स्थानीय तहसे भोटे कोसी घान्दिरी खाबा भालग्याम प्रभावित मिनिला उद्धार राहतेन पुनर्स्थापनारी करोड गिक्से लाख चुई टाङ्गा रो लाबा निर्णय लाभामुला जोङला लोलोलोलो ओडा थिएन युलबाङ सहकारी थिएन निजी घेन्दुन्चे भाल प्रभावित राहतला टाङ्गा पिन्बा घोषणा लाभिनला दुलिखेल नगरपालिका से भाल प्रभावितला उदा थिएन राहत दा लाख चुई रो लाबा निर्णय लाभामुला नगरपालिकाला रो तेन्बा नगर ग्रेनपो निरा जन जङ्गम से भोटे कोशी भाल लिचा दुलिखेल्ला मेन्दोब्ली दाते नोन सम्पर्करी खाबा आरेबिसी सुङबा मुला जोङ प्रशासन गेजाङ काभ्रे पलाञ्चोग्री जोङ नाङ्ग्याम मेन्दो गाचुई नि मिनी सम्पर्करी आरेबिसी विवरण दर्ता लाबा मुला चुनिकादेरी तिलाई सम्पर्करी खाबा थिएन तिलाईला सिबा हिरो स्याप्पा लिचा दाते नोन मेन्दो ब्लिचुई घिक मिनी सम्पर्करी खाबा अरे भोटे कोशी ताबान त्रिशुली घान्दिरी खाबा भालचेलामा प्रभावित ताबा नुवाकोटला लोपखाङ कार्य अनिश्चित दुई दोना दा बन्द लाभा मुला भालचे प्रभावित ताबा विदुर नगरपालिका लाछ्याम किस्पाङ गाउँपालिका नाङ्ला मोकोन लोपखाङ बन्द मुला बिसाम बेलकोट गढी थेन तार्के सोर्से प्रभावित थुम्ला स्यार गेन्दुन सेङ्बा अनिश्चित ताबा हिला भालचेलामा लोपबोन मास्टर थेन अभिभावक मासी चिबा लोपखाङला संरचना सडक ग्यालाम थिएन चामरी ताबा छेतिसे खाबा निबारी समस्या ताबासे धातेन लोपखाङ सेङ्बा तयारी तिलाई आरेबिसी विदुरला नगर ग्रेनपो राजन श्रेष्ठसे सुङबामुला त्रिशुली घान्दिरी खाबा भालसे मोकोन भीमा लाना प्रभावित ताबा विदुर नगर नाङ्री सेङ्बा गोर ब्रेचुई सोमरी गोर चुइनी भीमा लाना लोपखाङ प्रभावित ताबामुला स्यार विकास थिएन समन्वय इकाई नुवाको से तेबा तथ्याङ्करी त्रिभुवन त्रिशुली लोपखाङ रामचन्द्र आधारभूत लोपखाङ त्रिशुली सामुदायिक बोर्डिङ लोपखाङ ला मोकोन संरचनारी छेती ताबासे होजाग लारी लोपखाङ सेङबारी आखाम्बा धुइरी धोबा मुला चुराङलासिन उत्तर गया इङ्ग्लिस बोर्डिङ लोपखाङ सहित जगत प्रकाश जङ शाह संस्कृत माबी थेन पायोनियर इङ्ग्लिस बोर्डिङ किस्पाङ गाउँपालिकारी मुबा लोपखाङ कादेरिनोन छेती ताबा मुला बेलकोट गढी निस्ला शिला देवी माबी थेन ओडा नम्बर घाला महादेव माबिनोन भालग्याम प्रभावित ताबा मुला बाँकेरी मेन्दो डु तोङ डु जामेकोला कादेदा बिसी एच एबी ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस विरुद्धला खोप अभियान सेङ्बा ताबामुला अभियान डिचु भदौ सोमचुइला कुनु हेन्चे खोप पिनबारी तिसेदा मुला बिसी लुई गेजाङ बाँकेला घ्रेन्पो सुनिता पौडेलसे सुङबामुला सुनिता पौडेलसे सोङबा अनुसार खोप अभियान तिबा जोङ कादेला मोकोन स्थानीय तह लोपखाङ ग्याम लासेदा मुला विशेष लासी कक्षा डुरी डोबा लोबोन जामेकोला कादेदा प्राथमिकतारी थान्सी खोप पिन्सेदा मुला चुलिछा समुदायरी चुई धिङला झामेकोला कादेदा खोप पिन्सेदा मुला बिसी ग्रेन सुनिता पौडेल चे सुङबा मुला क्यान्सरला क्यान्सर ह्याम्दा काबरी बिसी चु खोप तिरेम पिन्बा लाबा मुला च्यान्चुबान मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला
1: धेरै वर्षा भइरहेको बेला पहिरो जान सक्ने भिरालो ठाउँमा नबस्नुहोस्। आफ्नो घर वरिपरिको वातावरण हेर्नुहोस्। सुरक्षित रहन मौसम सम्बन्धी सूचना जानकारी नियमित लिने गर्नुहोस्।
2: समयमै सावधानी अपनाई हानि नोक्सानी हुनबाट जोगिनुहोस्। बाढी पहिरोबाट बचौँ, सुरक्षित नेपाल बनाऊ।
1: रेडियो नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

काम कर रही है। ये बात बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म शाह ने कहा कि सैलाब की तकलीफ रसवा, नुआकोट और दहादिंग को ही नहीं मिली है, बल्कि ये तमाम नेपालियों में पड़ने वाला एक मुश्तरका वज्रपात है। शहरियों की तलाश और जख्मियों का इलाज जारी रहने का तذکرہ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म बालेंद्र शाह ने इस अज़्म का इजहार किया कि सैलाब की वजह से बेघर होने वालों के लिए फौरी तौर पर आर्जी और तवील मुद्दती मुस्तकिल रहाइश का इंतज़ाम हुकूमत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शाह ने नामालूम लाशों को कानून के मुताबिक साइंसी अमल को मुकम्मल करके ज़ेर ज़मीन बहिफाजत इंतज़ाम किए जाने की जानकारी कराते हुए कहा कि DNA और शनाख्त में मुआवनत करने वाले दिगर शवाहिद महफूज रहने की वजह से शनाख्त होते ही लवाहिकीन के हवाले किया जा सकता है। सैलाब मुतासरा इलाकों में बंद बिजली और मवासिलाती खिदमात को बहाल करने के लिए दूसरे ही दिन से काम जारी रहने का तذکرہ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शाह ने कहा कि अब तक 95% इलाके में मवासिलाती खिदमात फराहम की जा चुकी हैं। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म शाह ने बताया कि नुआकोट में 85%, दादिंग में 98% और रसवा में 40% बिजली की खिदमात बहाल कर दी गई है। सैलाब से भोटेकोशी और त्रिशूली कॉरिडोर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सोलर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की बात बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म शाह ने कहा कि बिजली की पैदावार करने वाले 8 मंसूबों में 281 मेगावाट और ज़ेर तामीर 4 मंसूबों में 388 मेगावाट बिजली ख़राब हुई है, जिसकी मरम्मत के लिए बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शाह ने ऐवान को बताया कि जैसे ही 2/10 गते को इस वाक़े की खबर मिली, रियासत के तमाम वसाइल को मुतासरा लोगों की तलाश, बचाव और राहत की तकसीम में लगा दिया गया और पहले ही दिन 13,300 से ज़ायद हिफाजती अहलकारों को मुतासरा इलाके में तैनात कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शाह ने कहा कि 2/10 गते की शाम तक तलाश और बचाव के लिए मुख्तलिफ 69 परवाज़ों के ज़रिए 351 ज़ख्मियों और फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म शाह ने ऐवान को आगाह किया कि पहले ही दिन मुतासरा इलाकों के 3,500 अफराद को आर्जी तौर पर महफूज मुकामात पर ठहराया गया और इमदादी सामान के 8 ट्रक को मुतासरा इलाकों में भेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शाह ने कहा कि रसवा सैलाब की बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली और इससे पैदा होने वाले बड़े पैमाने पर बर्फानी तूदे होने की वजह से नेपाल को इससे होने वाले नुकसानात को आलमी बरादरी के सामने मजबूती से पेश करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शाह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक आलमी रुझान होने की वजह से इसके असरात को कम करना और इसका इंतज़ाम करना आलमी बरादरी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शाह ने ऐवान को मुत्तला किया कि मौजूदा तबाही पेशिन गोई से बाहर है और तलाश और बचाव में मसाइल भी हैं और ये कि भारतीय, चीनी और कोरियाई माहिरीन पर मुश्तमिल टीमों को मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुकामात पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुतहर्रिक किया जा रहा है। उन्होंने आम आवाम से अपील की है कि वो हौसला शिकनी किए बगैर काम करें, क्योंकि इब्तदाई तौर पर कचड़े, तूदे और मलबे की वजह से रेस्क्यू आलात बशमूल एक्सकवेटर और हेलीकॉप्टर को ले जाने में दुश्वारी पेश आई है। इसलिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म डिजास्टर रिलीफ फंड में इस वक्त 6,88,00,000 रुपये से ज़ायद की रकम मौजूद है और मजीद 61,41,000 अमरीकी डॉलर से ज़ायद की इजाफी रकम भी मौसूल हुई है। उन्होंने मजीद बताया कि नेपाल को आफात से निमटने के लिए दोस्त ममालिक बशमूल चीन, भारत, पाकिस्तान, अमरीका, जापान और बरतानिया के साथ साथ एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक्वामे मुत्तहदा की शराकत दारों से भी मदद मिल रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कोऑर्डिनेटर पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा है कि भोटेकोशी का सैलाब न सिर्फ एक मुल्क और एक मखसूस जोग्राफिया है, बल्कि ये एक आलमी सानहा है। आज ऐवान नुमाइंदगान के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल ने बारहा कुदरती आफात का सामना किया है।
نیپال کو بار بار سیلاب، تودے اور زلزلہ جیسی قدرتی آفات کا سامنا کرنے کی یاد دہانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی قیادت کو مشکل حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झाचा सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। प्रतिनिधि सभाके आजुक बैठकमे रसुवाके भोटिकोसीमे आल विनाशकारी बाढ़सँ पहुँचने क्षतिप्रति दुख व्यक्त करैत विशेष प्रस्ताव पारित भेल अछि। बैठकमे विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत करैत सभामुख टोल प्रसाद आर्याल सप्ताहके सरकार राजनीतिक दल नागरिक समाज आ राज्यके सब संयन्त्र परिचालनके खोज उद्धार घायलके उपचार तथा पुनर्स्थापनाके लेल प्रबन्ध मिलाबऽ सरकारके निर्देशन सेहो देलनि। सभामुख आर्याल जलवायु परिवर्तनके कारण नेपालमे हरेक वर्ष अधिक क्षति होइत आयल चर्च करैत जलवायु परिवर्तनसँ सृजित क्षति आ नोकसानीके अन्तर्राष्ट्रीय बहसमे नेपाल स्पष्ट आ मजबूत आवाज उठेबाक चाही बतौलनि। एहिसँ पहिने आजुक बैठकमे राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी रासपाके संसदीय दलके उपनेता गणेश पराजुली सङ्कटके समय भेल कमी कमजोरीके स्वीकार करैत सरकार नागरिकके जीवन रक्षाक लेल लागत चाही बतौलनि। अहिना बैठकमे नेपाली काँग्रेसके संसदीय दलके नेता भीष्मराज आङ दिम्बी सुरुङ भीतर फसल नागरिकके खोज तथा उद्धारमे भऽ रहल ढिलाइ अमानवीय आ गम्भीर कमजोरी भेल बतौलनि। बैठकमे नेकपा एमालेके संसदीय दलके नेता रामबहादुर थापा सरकार अपन योजना प्रगतिके सम्बन्धमे संसदके निरन्तर जानकारी करेबाक माग कयलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीके संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड विपदके सामना करबाक लेल तीनू तहके सरकार बीच समन्वय हेबाक चाही बतौलनि। संयोजक प्रचण्ड खोज तथा उद्धारक लेल सरकार सेना परिचालन कयने बावजूदो जन परिचालन करऽ नहि सकल बतौलनि। सम संस्कृति पार्टीके सांसद ध्रुवराज राय बेपत्ता नागरिकके खोज उद्धार तथा घायलके विचारमे विशेष ध्यान देबऽ सरकार सङ्ग माग कयलनि। राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाके संसदीय दलके नेता ज्ञान बहादुर शाही विपदके समयमे जानके परवाह नहि कऽ खोज तथा उद्धारमे खटल सुरक्षाकर्मीके सेवा सुविधा बढ़ाबऽ लेल माग कयलनि। प्रतिनिधि सभाके दोसर बैठक भादो 18 गते दिनके 1 बजे बैसत। एहिसँ पहिने प्रतिनिधि सभाके आजुक बैठकमे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भोटिकोसी बाढ़ प्रभावितके खोजी उद्धार आ राहतके सम्बन्धमे सरकार कऽ रहल काज कार्रवाईके सम्बन्धमे जानकारी करौलनि अछि। सरकार संकटके घड़ीमे जनताके हिम्मत आर भरोसा देबाक चाही दृढ़ताके सङ्ग काज कऽ रहल चर्च करैत प्रधानमन्त्री शाह बाढ़िके पीड़ा रसुआ नुआकोट आ धादिङके मात्र नहि भऽ सभ नेपालीके रहल बतौलनि। प्रधानमन्त्री शाह बाढ़िक कारण घर बाहर विहीन भेलके तत्काल अस्थायी आ दीर्घकालीन लैलेल थाई आवासके व्यवस्था सरकार करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। प्रधानमन्त्री शाह पहचान होबऽ नहि सकल सब सब कानून बमोजीमे वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा कऽ कऽ जमीनके नीचा सुरक्षित रूपमे व्यवस्थापन कयल गेल जानकारी करबैत DNA लगायत अन्य पहचानके सहयोग करयवला आधार सब सुरक्षित राखल गेलासँ पहचान हेबाक सङ्गे परिवारके हस्तान्तरण कयल जा सकत से बतौलनि। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रमे अवरुद्ध विद्युत तथा संचार सेवा सुचारू करबाक लेल दोसर दिनेसँ काज भेल जानकारी दैत प्रधानमन्त्री शाह अखन धरि 95% क्षेत्रमे संचार सेवा उपलब्ध भेल बतौलनि। भादो 10 गते साँझ धरि खोज उद्धारके लेल विभिन्न 69 उडान मार्फत 351 घायल तथा असमंजसमे पड़ल व्यक्ति सबके उद्धार कयल गेल प्रधानमन्त्री शाह बतौलनि। घटनाके दिनेसँ प्रभावित क्षेत्रमे आवश्यकता हिसाबे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग लेबऽके प्रयास कयल गेल बतबैत प्रधानमन्त्री शाह एहिके लेल प्रक्रिया सेहो छोट बनौने आ 10 गतेसँ चीन आ भारत लगायत देशसँ प्राविधिक जनशक्ति सहितके सहयोगके लेल प्रयास भेल सदनमे जानकारी करौलनि। प्रधानमन्त्री शाह रसुआ बाढ़िके मूल कारण जलवायु परिवर्तन आइसँ सृजित बड़का हिम भूस्खलन भेल कारणे एहिसँ नेपालके भोगऽ पड़ल क्षतिके सम्बन्धमे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय सङ्ग मजबूत सङ्ग प्रस्तुत करब से बतौलनि। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान भेल कारण एहिके असर न्यूनीकरण आ व्यवस्थापनके लेल विश्व समुदायके सदिया जिम्मेवारी रहल प्रधानमन्त्री शाह बतौलनि। बाढ़िसँ भोटिकोसी आ त्रिशूली कॉरिडोरके जल विद्युत आयोजना आ सौर्य परियोजनामे अधिक क्षति पहुँचने जानकारी करबैत प्रधानमन्त्री शाह विद्युत उत्पादन कऽ रहल 8 योजनामे 281 मेगावाट आ निर्माणाधीन 4 388 मेगावाट क्षतिग्रस्त भेल आ मरम्मतके लेल अधिक लगानी लागत से देखल गेल बतौलनि।
बाढ़िक कारण अखन धरि 4031.1 मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध भेल। प्रधानमंत्री शाह सदन के जानकारी करौलनि। प्रधानमंत्री शाह अखन विपद के पूर्वानुमान सँ बाहर के भेला सँ खोजी तथा उद्धार में समस्या देखल गेल। जानकारी करबैत विभिन्न जल विद्युत आयोजना के सुरंग में उद्धार कार्य के लेल भारतीय चीनिया कोरियन विज्ञ सहित के टोली परिचालन भऽ रहल बतौलनि। अहिना थाल के कारण शुरू में एक्सावेटर आ हेलीकॉप्टर लगात के उद्धार उपकरण लऽ जाय में समस्या भेला सँ ढिलाई भेल। ऐसा विचलित नहीं हेबाक लेल काज कर रहल आ काज कर रहल सबके प्रोत्साहन भेटे एहि हिसाब सँ सहयोग कर लेल सबके आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री शाह अखन प्रधानमंत्री विपद राहत कोष में 6.88 अरब टका सँ अधिक मौजदात रहल। अखन थप 61,41,000 अमेरिकी डॉलर सँ अधिक प्राप्त रकम सदन की जानकारी करौलनि। नेपाल के विपद व्यवस्थापन में चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, बेलायत लगायत मित्र राष्ट्र, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत के अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदार सब से सेहो सहयोग प्राप्त भ रहल जानकारी करौलनि। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम संग नेपालक लेल बेलायत के राजदूत रव फेन शिष्टाचार भेंट वार्ता कयलनि अछि। आय मंत्रालय में भेल भेंट में हुनका सबके बीच जलवायु परिवर्तन के कारण अपूर्णीय क्षति भ रहल आय से अधिक जोखिम नेपाल के बिहोरा पड़ रहल विषय में विचार विमर्श भेल बतौलनि। मंत्री गौतम अप्रत्याशित बाढ़ बाद के विकास विपद प्रतिरोधी करय वाला विषय के नेपाल प्राथमिकता में राखत से बतौलनि। ओ टिकाऊ आ उत्थानशील विकास के लिए मित्र राष्ट्र दात्री निकाय के सहयोग निरंतर रहत से विश्वास व्यक्त कयलनि। एहि अवसर पर राजदूत फेन भूटिकोशी बाढ़ से आयल अप्रत्याशित विपद से भेल मानवीय क्षति प्रति संवेदना प्रकट करते संपर्क विहीन व्यक्ति सबके खोजी कार्य के प्रभावकारी बनाल जेबाक चाही पर जोर दलनि। राजदूत फेन आर्थिक प्राविधिक आ मानव स्रोत मार्फत विकास कार्य आ पुनः स्थापना के लेल बेलायत सरकार आपसी सहयोग आ समन्वय के निरंतरता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। त्रिशूली नदी के कटानक कारण पृथ्वीराज मार्ग में सवारी आवागमन प्रभावित भेलाक बाद काठमांडू हिठौड़ा जोड़े वाला वैकल्पिक मार्ग के नया रूट तथा कार्यतालिका सार्वजनिक कयल गेल अछि। वर्षा के समय आ सड़क के अवस्था के ध्यान में रखैत काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय जिला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर के समन्वय में वैकल्पिक रूट निर्धारण कयल गेल अछि। उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेश राज सुवेदी के कहब हिसाबे काठमांडू से हिठौड़ा जाय वाला छोट सवारी के लेल फरपिंग, फाकेल, कुलेखानी, भीमफेदी के रूट कायम कयल गेल अछि। तहिना हिठौड़ा से काठमांडू आवय वाला छोट सवारी भीमफेदी, कुलेखानी, सिसनेरी, दक्षिण काली होइत काठमांडू प्रवेश करत। तहिना बड़का मालवाहक सवारी काठमांडू से चापागांव, भट्टे डाड़ा, ठिंगन होइत हिठौड़ा पहुँचत। ई रूट उपयोग करय वाला सवारी साधन के साँझ 6 बजे भीतर ठिंकन चेकपोस्ट पार करवाक व्यवस्था कयल गेल अछि। हेठौड़ा से बड़का तथा मालवाहक सवारी साधन के लेल भैंसे, पालुंग, टिस्टुंग, नोबी से होइत काठमांडू अयबाक व्यवस्था मिलाल गेल ट्रैफिक प्रहरी जनौलक अछि। मकवानपुर के त्रिखंडी लग के बेली ब्रिजक भार वाहन क्षमता कमजोर भेला से ईंधन लोड भेल टैंकर तथा भारी मालवाहक सवारी के एहि पुल के प्रयोग नहि करबाक लेल ट्रैफिक प्रहरी आग्रह कयलक अछि। भारी मालवाहक सवारी के लेल बेली ब्रिज लग रहल डाइवर्सन के प्रयोग करबाक लेल निर्देशन देल गेल। प्रवक्ता सुवेदी जानकारी देलनि अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक भूटेकोशी नदी में आयल बाढ़ से प्रभावित भ बैंकिंग कारोबार के लेल आवश्यक चेक, कार्ड, मोबाइल तथा अन्य कागजात नहीं भेल ग्राहक के सहजे रूप में वित्तीय सेवा उपलब्ध करेबाक लेल बैंक तथा वित्तीय संस्था के निर्देशन दलक अछि। राष्ट्रीय बैंक के बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग सूचना जारी करत बैंक तथा वित्तीय संस्था के विपद पीड़ित ग्राहक के पहचान किन कर आवश्यक सहयोग आ सहजीकरण करबाक लेल निर्देशन दलक अछि। प्राकृतिक विपद के कारण बैंकिंग कारोबार के लिए आवश्यक कागजात तथा सामग्री नहीं भेल ग्राहक के सेवा प्राप्त करबाक लेल समस्या नहीं हुए उद्देश्य के संग ई व्यवस्था कायल गेल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। सूचना हिसाबे बैंक तथा वित्तीय संस्था के अपन अभिलेख में रहल ग्राहक के हस्ताक्षर, नमूना, फोटो तथा अन्य विवरण के आधार में ग्राहक के पहचान यकीन कायल जा सकत अछि। ओहि के आधार पर विषम परिस्थिति में ग्राहक के आवश्यक बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध करेबाक लेल सहजीकरण करबाक लेल राष्ट्र बैंक निर्देशन देलक अछि।
मध्य प्रदेश सरकार के कार्य सम्पादन तथा कार्य विभाजन संबंधी नियावली परिवर्जन करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ायल जायत। मध्य प्रदेश सरकार के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री श्याम प्रसाद पटेल विभिन्न मांग सहित मुख्यमंत्री कार्यालय आगू धरना में रह बैसित आयल। मुक्त हरवाह चरवाह संघर्ष समिति के प्रतिनिधि बीच मंगल दिन सम्पन्न वार्ता में कार्य विभाजन संबंधी नियावली परिमार्जन के लिए आवश्यक प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक सहमति भेल। वार्ता में प्रदेश सरकार के कार्य विभाजन तथा कार्य संपादन के थप व्यवस्थित प्रभावकारी समयानुकूल बनावा विद्यमान नियावली में आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन करवाक आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर प्रस्ताव के आगू बढ़ेबाक सहमति भेल। मुक्त हरवाह चरवाह संघर्ष समिति के सदस्य बलराम भट्टराय जानकारी दिलन। सहमति भेल संगे भादो 10 गते से मुक्त हरवाह चरवाह संघर्ष समिति जनकपुर धाम स्थित मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आगू जारी रखने धारणा स्थगित कैल गेल। सदस्य भट्टराय बतौलने सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा से भोटे कोशी बाढ़ आपदा संबंधी विशेष प्रस्ताव पारित। राज्य के सभी संयंत्र परिचालन कर राहत उद्धार और पुनर्स्थापना की व्यवस्था मिलाने के लिए सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सरकार को किया निर्देश। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा भोटे कोशी बाढ़ में सरकार द्वारा किए जा रहे खोज उद्धार और राहत कार्यों के संबंध में सदन को जानकारी। बाढ़ के कारण घर विहीन हुए लोगों के लिए सरकार आवास की व्यवस्था करेगी, प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता। बाढ़ से पर्यटन क्षेत्र में 50 अरब रुपए से अधिक की क्षति होने का प्रारंभिक अनुमान। और अफगानिस्तान में एक ही दिन में लगभग 2000 अफगान शरणार्थी स्वदेश लौटे वापस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हिमालयी क्षेत्र में जोखिम बढ़ता जा रहा है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में भोटे कोशी बाढ़ प्रभावितों की खोज बचाव और राहत के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री शाह ने बताया कि विशेषज्ञों ने रसुआ के भोटे कोशी नदी में इसी भाद्र 10 गति आई बाढ़ को हिमालयी क्षेत्र में बर्फ पिघलने और हिमस्खलन के कारण इस क्षेत्र में आई एक बड़ी आपदा बताया है। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि इस घटना से सभी को सचेत रहना चाहिए और साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न इस आपदा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि संकट की इस घड़ी में जनता को हिम्मत और भरोसा देना सरकार का कर्तव्य है और वे इसी दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शाह ने यह भी साझा किया कि बाढ़ की ये पीड़ा सिर्फ रसुआ, नुआकोट और धादिंग की नहीं बल्कि सभी नेपालियों पर पड़ा एक साझा वज्रपात है। नागरिकों की खोज और घायलों के इलाज की आवश्यकता पूरी होने तक निरंतर कार्य जारी रखने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने प्रतिबद्धता जताई कि सरकार बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों के लिए तत्काल अस्थायी और दीर्घकालीन के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था करेगी। प्रधानमंत्री शाह ने जानकारी दी कि जिन शवों की पहचान नहीं हो सकी है उनका कानून के अनुसार वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा कर जमीन के नीचे सुरक्षित प्रबंधन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि डीएनए सहित अन्य पहचान के तरीकों को सुरक्षित रखा गया है ताकि पहचान होते ही शव उनके परिजनों को सौंपे जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाधित बिजली और संचार सेवा को सुचारू करने के लिए दूसरे दिन से ही काम शुरू होने की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री शाह ने बताया कि वर्तमान में 95% क्षेत्र में संचार सेवा उपलब्ध हो चुकी है। इसी तरह नुआकोट में 85%, धादिंग में 98% और रसुआ में 40% बिजली सेवा बहाल होने की जानकारी प्रधानमंत्री शाह ने दी। प्रधानमंत्री शाह ने जानकारी दी कि बाढ़ ने भोटे कोशी और त्रिशूली कॉरिडोर की जलविद्युत परियोजनाओं और सौर परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि बिजली उत्पादन कर रही 8 परियोजनाओं में से 281 मेगावाट और 388 मेगावाट क्षमता के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता दिख रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध हैं और उनके मरम्मत का काम भी चल रहा है। प्रधानमंत्री शाह ने बताया कि भाद्र 10 गति की शाम तक खोज और बचाव कार्य के लिए विभिन्न 69 उड़ानों के माध्यम से 3051 फंसे हुए तथा असहाय लोगों का उद्धार किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि पहले दिन ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 3500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी आवास की व्यवस्था करने के साथ साथ 8 ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुँचाई गई। प्रधानमंत्री शाह ने बताया कि मौजूदा आपदा पूर्वानुमान से बाहर होने के कारण खोज और बचाव में समस्या आई है। उन्होंने जानकारी दी कि विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में बचाव कार्य के लिए भारतीय, चीनी और कोरियाई विशेषज्ञों सहित टीमों को तैनात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शाह ने यह भी बताया कि कीचड़ और मलबे के कारण शुरुआत में एक्सकावेटर और हेलीकॉप्टर सहित बचाव उपकरण ले जाने में समस्या हुई थी। इस वजह से कुछ देरी होने के बावजूद उन्होंने बिना विचलित हुए काम जारी रखने और काम कर रहे लोगों को प्रोत्साहित व सहयोग करने का सभी से आग्रह किया। प्रधानमंत्री शाह ने सदन को जानकारी दी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में 6,88,00,000 रुपए से अधिक की राशि मौजूद है और अभी हाल में 61,41,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री शाह ने पाकिस्तान जानकारी दी कि नेपाल को आपदा प्रबंधन में चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे मित्र देशों और एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ से सहयोग मिला है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में रसुआ के भोटेकोशी में आए विनाशकारी बाढ़ से हुई क्षति के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हुए विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सभी तहों के सरकारों, जन राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और राज्य के सभी संयंत्र परिचालन कर खोज, उद्धार, घायलों के इलाज तथा पुनर्स्थापना का प्रबंधन मिलाने का सरकार को निर्देश किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
0: अब बाकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल ने कहा कि भोटेकोशी बाढ़ से पर्यटन क्षेत्र में 50 अरब रुपए से अधिक के क्षति होने का प्रारंभिक अनुमान किया गया है। आज प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति की बैठक में मंत्री पौडेल ने ये बात कही। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा है कि सरकार भोटेकोशी बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश कर रही है। चिली में जल विद्युत परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के परिजनों के साथ आज मंत्रालय में मुलाकात करते हुए उन्होंने धैर्य रखने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि लापता लोगों की तलाश तथा उद्धार के लिए राज्य के सभी संयंत्र, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि और उपलब्ध स्रोत साधन परिचालन किए जा चुके हैं। जलस्रोत तथा जल विज्ञान अनुसंधान केंद्र बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा ने भोटेकोशी, त्रिशूली सहित आसपास की नदियों में आज पानी का स्तर बढ़ने और आकस्मिक बाढ़ की उच्च संभावना रहने की जानकारी दी है। महाशाखा की बाढ़ विशेषज्ञ सरस्वती बिष्ट ने रसुआ और नुआकोट होकर बहने वाली उन नदियों के तटीय क्षेत्र के निवासियों से उच्च सतर्कता अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने नेपाल चीन सीमा क्षेत्र के पास ताल झील बनने और वो झील किसी भी समय फूट सकने के कारण अगली सूचना जारी न होने तक आम जनता से उच्च सतर्कता अपनाने का आग्रह किया। इसी तरह महाशाखा ने आज और कल बारिश की संभावना भी होने के कारण बाढ़ का उच्च जोखिम रहने की जानकारी दी। महाशाखा ने देश के विभिन्न जिलों की छोटी नदियों और नदी नालों में आकस्मिक बाढ़ का जोखिम रहने के कारण तटीय क्षेत्रों में रहने वाले और नदी किनारे से यात्रा करने वाले आम नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। नेपाल पुलिस अस्पताल ने रसुआ के भोटेकोशी में आई बाढ़ में मृत नेपाली और 2 विदेशी नागरिकों के शवों की पहचान के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की है। बाढ़ के कारण लापता नेपाली तथा विदेशी नागरिकों के परिवारों ने डीएनए परीक्षण मार्फत मिले शवों तथा शरीर के अंगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अस्पताल ने डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए लापता व्यक्ति के संपर्क में न आ पाने वाले परिजन, अपना परिचय पत्र खोलने वाला कोई भी दस्तावेज और 2 फोटो लेकर अस्पताल आकर अपना नमूना दे सकते हैं। एकत्र किए गए नमूने नेपाल पुलिस की विधि विज्ञान और नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान में भेजे जाएंगे। ये जानकारी पुलिस अस्पताल के प्रवक्ता रामेश्वर अधिकारी ने दी। इसी तरह लापता विदेशी नागरिकों के मामले में माता पिता, पुत्र या पुत्री में से कोई एक व्यक्ति विदेश में ही डीएनए प्रोफाइलिंग कराकर तुलना के लिए डीएनए प्रोफाइल की सॉफ्ट कॉपी पुलिस के आधिकारिक ईमेल पर भेजा जा सकता है। ये जानकारी अस्पताल के प्रवक्ता अधिकारी ने दी। अस्पताल ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से शवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए नमूने एकत्र कर उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की गई है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरवा रूपन्देहीकी तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य सहित 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्य सहित कार्यालय के तत्कालीन नायब सुब्बा लक्ष्मण प्रसाद न्यौपाने और अजित कुमार साहनी चाय, तत्कालीन खरीदार मेघ बहादुर भुजेल मगर, जगाधनी पर्वत राजकांत मिश्र विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में मुकदमा दर्ज किया है। ये बात आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में एक ही दिन में 1,750 लोगों से अधिक अफगान शरणार्थी अपनी अपनी मातृभूमि वापस लौटे हैं। ये जानकारी अफगान के आधिकारिक रेडियो तथा टेलीविजन से दी गई है। उनमें से 1,449 शरणार्थी पाकिस्तान से वापस आए हैं, वहीं बाकी 306 ईरान से लौटे हैं। बता दें कि अफगानिस्तान में विदेश में रहने वाले लगभग 60 लाख नागरिक हैं, जिनमें से अधिकांश ईरान और पाकिस्तान के हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा से भोटे कोशी बाढ़ आपदा संबंधी विशेष प्रस्ताव पारित। राज्य के सभी संयंत्र परिचालन कर राहत उद्धार और पुनर्स्थापना की व्यवस्था मिलाने के लिए सभामुख डोल प्रसाद आर्याल ने सरकार को किया निर्देश। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा भोटे कोशी बाढ़ में सरकार द्वारा किए जा रहे खोज उद्धार और राहत कार्यों के संबंध में सदन को दी जानकारी। बाढ़ के कारण घरविहीन हुए लोगों के लिए सरकार आवास की व्यवस्था करेगी, प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता। बाढ़ से पर्यटन क्षेत्र में 50 अरब रुपए से अधिक की क्षति होने का प्रारंभिक अनुमान और अफगानिस्तान में एक ही दिन में लगभग 2000 अफगान शरणार्थी स्वदेश लौटे वापस। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी एलटीई मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: हामी रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ। आदरणीय श्रोता, आज दिउँसो बसेको संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्नुभएको छ। अब हामी सोही सम्बोधनको पुनः प्रसारण गर्नेछौँ।
6: सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म विशेष जिम्मेवारीका सहित यस गरिबको रोस्टरमा उभिएको छु। भदौ 10 गते रसुवाको भोटे कोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले क्षणभरमै हामीबाट हाम्रा आमा बुबा दिदी बहिनी र दाजुभाइहरू खोसेर लग्यो। यस अकल्पनीय विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण मानिसहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आफ्नो मान्छे गुमाएर गहिरो शोकमा पर्नुभएका परिवारजनप्रति हृदयदेखि नै संवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइते हुनुभएका सबै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु अनि आफ्नो मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहनुभएका नागरिकहरूको पीडामा म गहिरो महसुस गरेको कुरा व्यक्त गर्दछु। यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिङ्गो नेपालको छातीमा परेको साझा वज्रपात हो। तर यति बेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन। मन भक्कानिँदा पनि एक आपसमा बिलौना गर्ने समय छैन। सङ्कटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन जनतालाई हिम्मत आड भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यसैले दृढ सङ्कल्प साहसका साथ यो विपत्तिमा लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प छैन र थिएन, हामी लडिरहेका छौँ। घटनापछि सरकारले मानिसहरूको जीवन रक्षाका लागि के गर्दै छ, अहिले के गरिरहेको छ र अब के गर्नेछ भन्ने बारे जानकारी म सम्मानित सदनलाई दिन चाहन्छु। मिति 2083 भदौ 10 गते बिहान 8:45 बजे, ठिक त्यो बेला जब म यसै सदनमा उभिएर यहाँ उठाइने प्रश्नहरूको जवाब दिने तयारी गर्दै थिएँ, तर सूचना आयो रसुवाको भोटेको सीमा भीषण बाढी आयो। त्यो खबरसँगै हामी गम्भीर बन्यौँ। तत्कालै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लियौँ र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दियौँ। तर मनमा चिसो पस्यो कि हाम्रा मान्छेहरू जोगिन भ्याउनु भयो होला भनेर। बिहान 9 बजे तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो। बिहान 9:15 बजे परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइयो। प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने बारे निर्णय गरियो। बिहान 9:35 बजे टेलिकम कम्पनी मार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको मोबाइलमा सतर्कता अपनाउन सूचना पठाइयो। बिहान 9:45 बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो। त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो। तुरुन्तै निजी हेलिकप्टरलाई पनि स्ट्यान्डबाईमा राख्यो। बिहान 10 बजे नेपाली सेनाको मनसुन कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो। प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो। बिहान 10:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्च एन्ड रेस्क्यू तथा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम तयार अवस्थामा राख्यौँ। काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट सुरक्षाकर्मीहरूलाई खोज उद्धार, उपचार र राहत कार्यमा परिचालन गर्यौँ। बिहान 11 बजे विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बस्यो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरू सङ्कटमा परेको र जसरी पनि खोज उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता राख्न निर्देशन दियौँ। थप हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्न समेत सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थियौँ। 12:30 बजे मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धार उपचारलाई तीव्र बनाउन निर्णय गर्यौँ। साथै पन्ध्रवटा प्रभावित स्थानीय तहलाई 3 महिनाका लागि विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुन बमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने, घाइते एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र यस कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गर्यौँ। साथै घाइतेको तत्कालै निशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालले मिलाउने, घर निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थान सारी खानै बस्ने व्यवस्था मिलाउने, अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति, दूरसञ्चार, सडक, खानेपानी लगायत सेवा तत्कालै सञ्चालनलाई व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत भयो। 1:00 बजे प्रभावित क्षेत्रका सङ्घीय सांसदहरूसँग छलफल गर्यौँ। तत्कालै सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोन मार्फत पनि जानकारी लियौँ। सामान्य सभामुख महोदय, तत्कालै नेपाली सेनाको जोइन्ट अपरेसन कमिटी, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको क्विक एक्सन टिम र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको ऱ्यापिड एक्सन टिम मार्फत सूचना सङ्कलन, समन्वय र अनुगमन सुरु गर्यो। प्रभावित क्षेत्रमा खोजसँगै घाइतेको उद्धार गर्दै काठमाडौँ ल्याएर उपचार सुरु गरियो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा 100 बेड छुट्यायौँ। अन्य सबै ठुला अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्यौँ। सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, नेपाल रेड क्रस लगायत सहकार्यमा मेडिकल टिमलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटायौँ। आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि, रगत अभाव नहोस् भनेर रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, लायन्स क्लब लगायतसँग समन्वय सुरु गरियो। 3:00 बजे नै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा लाग्यो। त्यसयता राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थितिबारे निरन्तर ब्रिफिङ लिइरह्यौँ। थप आवश्यक निर्णय गर्दै गयौँ। हर समय हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गयौँ। 7:40 बजे प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो। हामीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धार उपचार मात्र चिन्ता थिएन। त्यस दिनदेखि घरमार वीर हुनुभएकाहरूका लागि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी थियो। घटना भएको दिन बुधबार मध्यरातमै 8 ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठायौँ। त्यसै दिन रातिसम्म प्रभावित क्षेत्रमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका लागि भोइस डेटा, SMS सेवा निशुल्क गऱ्यौँ। 11 गते भोलिपल्ट बिहानै पूर्वाधार विकास मन्त्री सहित टोली लिएर म आफै पनि स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगी वस्तुस्थिति बुझेर आएँ। प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो टोली सहित हुनुहुन्थ्यो। प्रभावित क्षेत्रबाट फर्के लगत्तै सोही दिन मन्त्री परिषदका सदस्यहरूसँग आपतकालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइयो। रसुवा र नुवाकोटका लागि 1-1 करोड रुपियाँ, धादिङका लागि 50 लाख रुपियाँ निकासा गर्यौँ। विदेशी नागरिकको खोजी उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपतकालीन प्रति कार्य टोली गठन गरियो। प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दियौँ। खोज उद्धार उपचार र राहतलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लग्यौँ। त्यस दिन राति 8 बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका गरी 13,300 सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसक्नु भएको थियो। साथै 69 उडान मार्फत 351 जनाको उद्धार गरिसकेको थियो। उडानका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकता दिएको थियो। प्रभावित 3500 जनालाई तत्काल बसोबास गराउन त्यस क्षेत्रमा विद्यालय, त्यस क्षेत्रका विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदाम घर, नुवाकोटको बट्टार स्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाएर प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरियो। विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशुली पठाइयो। काठमाडौँमा सङ्कलन भएका थप 10 ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो। सोही दिन बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको 1 महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरियो। प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार र राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त भएका सडक प्रभावित क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयास सुरु गरियो। सामुख महोदय, अब म यो सम्मानित सदनलाई हालसम्मको स्थिति र सरकारको काम कारवाहीबारे विस्तृत जानकारी गराउन अनुमति माग्छु। खोज तथा उद्धार घटना भए लगतै हामीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारेका थियौँ। केही बेर अघिसम्म 11,993 जना मानिसहरूको उद्धार गरिसकेका छौँ, तर पनि 3,916 जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएका 292 जना घाइतेमध्ये केही बेर अघिसम्म 182 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। बाँकी घाइतेहरूको पनि स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू लागिराख्नु भएको छ। उपचार तथा राहत, हामीले काठमाडौँबाट विशेषज्ञसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको उपचारका लागि पनि खटाइरहेका छौँ। उपचारसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। साथै प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेका छौँ। प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचना प्रभाव समेत भइरहेको छ। विपद पश्चात सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग उहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिम समेत प्रदान गरिरहेको छौँ। हाल नुवाकोटका 19 वटा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा 2,653 जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गर्नुभएको छ। रसुवाका केही प्रभावित नागरिकहरूलाई पनि नुवाकोटको आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइरहेका रहेको अवस्था छ। आर्थिक सहयोग परिचालन, नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोष मार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दैछ। केही बेर अघिसम्म मात्र राहत कोषमा 7,88,57,217 रुपियाँ जम्मा भएको छ। हिजो मात्र उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई 1 अर्ब रुपियाँ निकासा गरिएको थियो। त्यसमध्येबाट 6,75,00,000 रुपियाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र तनहुँका गरी 15 वटा पालिकामा निकासा भइसकेको छ। केही बेर अघिसम्म यो कोषमा 6,88,57,217 रुपियाँ मौजदात रहेको छ भने थप 61,41,702 अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोग, विपदको यस घडीमा हामीलाई मित्र राष्ट्रहरूबाट टेलिफोन, पत्रचार, सामाजिक सञ्जाल मार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको छ। यसले हामीलाई अझै दृढताका साथ यो विपत्तिमा लड्न बल मिलेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाउनु भएको छ। हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, युके लगायतका मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क, युरोपियली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ। अझै कतिपय मित्र राष्ट्र र सङ्घ संस्थाहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रभावित पूर्वाधार र पुनस्थापना, प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएका सञ्चार सेवा 2 दिनदेखि पुनस्थापना हुँदै हिजोसम्ममा 95% सेवा पुनस्थापना भइसकेको छ। सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थलहरूमा हाल 30 वटा सेटेलाइट फोन मार्फत सञ्चार भइरहेको छ। बाढीले भोटेको श्री त्रिशुली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। विद्युत उत्पादन गरिरहेका 8 वटा आयोजनामा 281 मेगावाट र निर्माणाधीन 4 वटामा 388 मेगावाट क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि ठुलो लगानी लाग्ने देखिएको छ। बाढीका कारण 431.1 मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था मार्फत 85% क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुनः प्रवाह गरिरहेका छौँ। धादिङमा धादिङमा 98% विद्युत सेवा पुनस्थापना भइसकेको छ, रसुवामा 40% विद्युत सेवा पुनस्थापना भइसकेको छ। जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनिया र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको छ। बाढीका कारण गल्छी, बेत्रावती, रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी मुगलिङ खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको छ। गल्छी, बेत्रावती, रसुवागढी सडकको विदुर, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी, रसुवागढी खण्डको 40 किलोमिटर पूर्ण रूपमा र 16 किलोमिटर आंशिक क्षति भएको थियो। साथै पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीर लगायतका क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे, गलौँदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइरहेको छ। बाढीका कारण 48 झोलुङ्गे पुल क्षति भएको छ, जसमध्ये 20 मर्मत गर्न मिल्ने र 28 नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका 31 मोटरेबल पुल भएका छन्। तीमध्ये 2 स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। गल्छी बेत्रावती सडकको गल्छी देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेलिब्रिज निर्माणको क्रममा छ। तादी देवीघाट बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ। बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेलिब्रिज राख्न सम्भव देखिएकोले काम सुरु भइसकेको छ। थप 20 ठाउँमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुगली नारायणघाट सडकको कृष्णवीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सब व्यवस्थापन, पहिचान हुन नसकेको सब कानुन बमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पुरा गरी जमिन मुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तर डिएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखिएको छ। यी सब डिएनए म्याचिङ पश्चात सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। पहिचान हुन सकेको सब परिवार र आफन्तलाई जिम्मा लगाइरहेको अवस्था छ। केही बेर अघिसम्म 1114 सब फेला परेका छन्, जसमध्ये 95 सबको शनाखत भई परिवारले बुझेका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, अचानक बेहोरेको यो ठुलो विपदको क्षति व्यवस्थापनमा अहरात्र जुट्दै गर्दा हाम्रो मनमा अर्को एउटा गहिरो प्रश्न पनि जन्मिएको छ। त्यो, हामी माझ कसरी यो विपद आइलाग्यो? विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी, हिमालय क्षेत्रको हिउँ चट्टानले हिम पहिरोबाट सृजित र यस क्षेत्रकै ठुलो विपत्ति भएको बताएका छन्। यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नु परेको जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर सङ्केत गरेको छ। त्यसैले हामी त सचेत हुनैपर्छ। सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपदबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो। यसको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेको बुझिएको छ। सामुख महोदय, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी जारी छ। घाइतेको उपचार जारी रहनेछ। घरबारविहीन हुनुभएकाहरूका लागि तत्कालका लागि अस्थायी र दीर्घकालीन पुनस्थापना सरकारले गर्ने नै छ। कोही कतै छुट्नु हुने छैन। यो बिचमा हामी विपदसँग लडिरहँदा हामीमाथि केही प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। समयमै बाढीको सूचना किन भएन भन्ने सन्दर्भमा, मानव सभ्यताले भएको मध्ये यो ठुलो घटना हो। यो विपद पूर्व अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो। बाढी आउँदै गरेको सूचना पाए लगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयलाई सतर्क बनाउन खटिनु भएको थियो। त्यसबेला उहाँहरू समेत बेपत्ता हुनुभएको छ। नेपाल सरकारबाट लगभग 11 लाखवटा एसएमएस र टेलिफोन कलहरू ती ठाउँहरूमा गरिएको थियो र त्यसको सूचना आधी घन्टा अगाडि नै त्यहाँ बस्नुभएका सम्पूर्णलाई दिएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सब व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा, यो ठुलो विपदमा धेरै मानिसहरूको नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनु भयो। बाढीले उहाँहरूको सबलाई फरक फरक ठाउँमा पुर्यायो। हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका सब मात्रै डिएनए लगायत पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखी जमिन मुनि व्यवस्थापन गरेका हौँ। पछि डिएनए मिल्न साथ ती सब सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ। त्यसपछि उहाँहरूले आआफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार अन्तिम संस्कार उहाँहरूले गर्नुहुने नै छ। त्यसैले यस विषयमा भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उद्धारका लागि विदेशी सहयोगको सन्दर्भमा, यति ठुलो विपद पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन सुरुदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौँ। प्रक्रिया समेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौँ। मित्र राष्ट्र चीन र भारतबाट उहाँहरूले टेक्निसियनहरू पठाउनु भएकै थियो। उहाँहरूले सुरुकै दिनदेखि पहिलो दिन दोस्रो दिन पनि रेकी गरिराख्नु भएको थियो। हवाई मार्फत त्यो एरियामा अहिले कस्तो क्षति भएको छ, त्यहाँ पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले रेकी गरिसकेर अनुगमन गरेर अहिले तत्काल ओर्लिने अवस्था छैन, तुरुन्तै ओर्लिन सक्दैनौँ। जुन बेला ओर्लिन सकिनेछ त्यति बेला नै भारतको अथवा चिनको टेक्निसियनहरू, नेपाली टेक्निसियन आर्मी उहाँहरू चाहिँ पुग्ने अवस्था भएपछि मात्रै पुग्नु भएको हो। यो चाहिँ विशेष अवस्था हो। त्यहाँनिर भएको हिलो लेदोमा एक्सकाभेटर मात्रै नभएर आर्मी सशस्त्र प्रहरीका व्यक्तिहरू पनि अड्डिने ठाउँ थिएन, त्यही भएर उहाँहरूले सम्भव भएसम्म सुतेर त्यहाँसम्म पुग्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। एक्सकाभेटरलाई अड्डिने ठाउँ, हेलिकप्टरलाई ल्यान्ड हुने ठाउँ भएपछि मात्रै त्यहाँनिर कार्यहरू, त्यहाँनिर उद्धार कार्यहरू सुरु गरिएको। विपदको बेला सङ्घीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुवातदेखि नै हामी प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। हामी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूलाई छलफल गरी विपद व्यवस्थापनमा आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो र साथसाथै त्यहाँ अहिले टनेलमा फस्नु भएको विषयमा पनि धेरै चर्चा आएको हुँदाखेरि यो टनेलमा आएको विपत्ति विशेष किसिमको छ। विश्वभरि टनेलमा कुनै विपद आउँदाखेरि विश्वभरि पाइने एक्सपर्टहरू चाहिँ टनेलमा आउने पहिरोलाई पन्छ्याएर उद्धार गर्ने एक्सपर्टिज चाहिँ विश्वभरि नै रहेको छ। तर यो चाहिँ फरक किसिमको किन हो भन्दाखेरि यो पहिरोले प्रभावित भएको अथवा पहिरोले थुनिएको टनेल होइन, यो बाढीभित्र पसेर बाढीसहित सँगसँगै हिलो माटोहरूले पुरै कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा थुनिएका टनेलहरू हुन्। यस सम्बन्धी काम गर्नलाई एकदमै ठुलो एक्सपर्टिज कुनै देशहरूसँग पनि थिएन, हामीसँग पनि एकदमै तत्कालै गर्न सकिने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन। विभिन्न राष्ट्रहरूमा जति उद्धार भएका थिए त्योभन्दा यो एकदमै बिल्कुलै फरक किसिमको अवस्था हो र त्यसको लागि जुन बेलामा पाएक पर्छ, जति बेला मौसमले साथ दिन्छ, जति बेला त्यो हिलो थोरै सुक्छ, जति बेला त्यहाँनिर अड्डिने ठाउँ हुन्छ र मान्छेहरू पस्न सक्ने, त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने ठाउँहरू हुन्छ त्यो बेला मात्रै गर्न सकिन्छ। र एउटा टनेलमा एकैचोटि 4-5 वटा 20 वटा एक्सकाभेटर किन लाइएन भन्ने जस्तो पनि कुरा आएको थियो। त्यो एउटा टनेलमा एकचोटिमा एउटा दुईवटा भन्दा धेरै एक्सकाभेटरले काम पनि गर्न सक्दैन, त्यसको एउटा सीमा छ। त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएर अथवा एकैचोटि बाहिर बाहिरतिर एक्सकाभेटर लगाएर पनि गर्न सकिने थिएन। हामीले चिन्ता लिइरहेको विषय त्यो किन बन्यो भन्दाखेरि हामीलाई धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी घर बस्दाखेरि अथवा वरपर विदुरसम्मै पुगेर हेर्दा पनि त्यही ठाउँको त्यही टनेलकै मुखको अवस्था कस्तो छ थाहा हुँदैन। अनि हामी प्रायः गुगल गर्छौँ, एआईलाई सोध्छौँ, आफ्नो साथीभाइ कोही जियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सोध्छौँ, जियोटेकहरूलाई सोध्छौँ, विभिन्न देशमा काम गरिराख्नुभएका इन्जिनियरहरूलाई सोध्छौँ र त्यो सोधेको आधारमा, बुझेको आधारमा नै हामीले प्रक्रिया दिएका छौँ। यसको लागि विभिन्न सोसल मिडिया, विभिन्न पत्रपत्रिकामा जुन गुनासो आएको छ त्यो हामी पूर्ण रूपमा बुझ्छौँ। हामी त्यो गुनासो आएर हामी विचलित पनि भएका छैनौँ, किनभने तपाईँहरूलाई जति जानकारी थियो त्यही जानकारीको आधारमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यसको लागि हामी विचलित भएका छैनौँ। हामीले गर्ने काम, नेपाली सेनाले गर्ने काम, सशस्त्र प्रहरीले गर्ने काम, नेपाल प्रहरीले गर्ने काम, सबैले गर्ने काम गरि नै राख्नु भएको छ र कृपया सकिन्छ भने उहाँहरूलाई अझै प्रोत्साहन दिनलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहोला। उहाँहरूलाई चाहिँ यो काम भएन त्यो काम भएन भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण निकायहरू लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहे। सहमुख महोदय, विपद पश्चात खोज उद्धार उपचार राहत र व्यवस्थापनदेखि पुनर्स्थापनाको चरमसम्म खटिनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवा कर्मचारी, मन्त्री परिषदका सदस्यहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाहरू, आम नागरिक, मित्र राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण सरकारवालाहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको आग्रह गर्दछौँ। सरकार हिजो पनि तपाईँहरूसँग थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। धन्यवाद।
7: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
3: राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको संचार।